लगता ही बड़ा प्यारा प्यार लगता ही, दिल का रुता ही दिल का रुता ही, मैं हिलू हिलू ए हिलू हिलू, जब कोई अच्छा लगता ही बड़ा प्यारा

गिनती रहती हूँ मैं अपनी करवटों के सिलसिले, क्या करूँ कैसे कहूँ, रात